प्यारे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक है जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

जब तक है जा जाने जहां मैं नाचूंगी प्यार कभी भी मरता नहीं मौत से भी ये डरता नहीं लुट जाएंगे मिट जाएंगे मर जाएंगे हम जिंदा रहेगी हमारी दास्तां।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के दो सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते तीसरे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातोंरात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1974 को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था लेकिन एकमात्र विजेता माधव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येदेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजी की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते राम जो प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे। इस घंटे की मुख्य खबरें। विश्व बैंक का प्रतिनिधिमंडल दुशांबे में चौथा अंतर्राष्ट्रीय उच्च जल सम्मेलन में भाग ले रहा है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई। ताजिकिस्तान के राजदूत ने कोरिया मध्य एशिया सहयोग मंच के सचिवालय के कार्यकारी निदेशक से मुलाकात की। ये और दूसरी खबरें हमारी इस घंटे में। विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने जल सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यदर्शक 2018-2028 पर आयोजित चौथे उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी तैयारी व्यक्त की है। इस वर्ष 25-28 मई को दुशांबे में आयोजित होगा। ये जानकारी ताजिकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय ने दी है। ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री दलेर जुमा ने विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जिसका नेतृत्व यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र में सतत विकास के लिए विश्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक समय वाहबाग कर रहे थे। बातचीत के दौरान जल क्षेत्र में ताजिकिस्तान की वैश्विक पहलों को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया गया। दोनों पक्षों ने सतत विकास के लक्ष्यों को लागू करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप अनुकूलन के लिए सहयोग को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। दलेर जुमा ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल को जल के लिए सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यदशक 2018-2028 पर आयोजित चौथे उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सक्रिय भागीदारों के लिए आमंत्रित किया। ये सम्मेलन जल क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ताजिकिस्तान गणराज्य के राजदूत यूसुफ शरीफ जोदा ने पाकिस्तान जल संसाधन अनुसंधान परिषद की महानिदेशक हफीजा रशीद से मुलाकात की। पाकिस्तान के इस्लामिक गणराज्य में ताजिकिस्तान गणराज्य का दूतावास के अनुसार बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच जल संसाधन प्रबंधन, जल गुणवत्ता सुधार, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अनुभवों के आदान प्रदान से संबंधित द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। साथ ही संस्थागत सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परियोजनाओं के विकास के महत्व पर भी जोर दिया गया। यूसुफ शरीफ जोदा ने डॉक्टर हफीजा रशीद को सतत विकास के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय कार्यदशक 2018-2028 पर आयोजित चौथे उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये सम्मेलन 25-28 मई 2026 तक दुशांबे में आयोजित होगा। दोनों पक्षों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस बैठक के परिणाम जल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे। कोरिया गणराज्य में ताजिकिस्तान गणराज्य के राजदूत सलोहिद्दीन किरोम ने कोरियाई मध्य एशिया सहयोग मंच के नव نیوک سچیوالای کے کوریا فاؤنڈیشن کارکاری نیدیشک اپادیاش کیم یون گو کے ساتھ ملاقات کے کوریا گنرجا میں تشخیصان گنرجا کے دوتاوس کے انصار ملاقات کے دوران مجھے ایشیا اور کوریا گنرجا کے مادل کے دانچے کے بیتر تشخیصان اور کوریا کے بیر سیو کے آشا جانا وشائیوں پر چرچہ کی گئی دوشنبے جلس پرکریا تجکستان کے لیے یہ متوپورن اوسر پردان کرتی ہے کہ وہ ویشوک جل ایجنڈا میں ایک پہل کرتا اور اگرانی دیش کے روپ میں اپنی ستھتی کو اور مضبوط کرتا ہے مہامہم امولی رامو کے نیترت میں تجکستان نہ کیول انتراشٹریہ استر پر جل سمبندھی مدوں کا پہل کرتا بنا ہے بلکہ دنیا کے دیشوں کے بیچ سنواد کا پل بھی بن رہا ہے انتراشٹریہ دشک ستت وکاس کے لیے جل 2018-2028 پر چوتھے اچ استری انتراشٹریہ سمیلن کے سچیوالے کے سدسیہ رستم عبداللہ کے انوسار دوشمبے کا چوتھا جل سمیلن ایسی سمائے میں آیوجت ہو رہا ہے جب جلوایو پریورتن کے کارن گلیشیئروں کا پگھلنا تیز ہو گیا ہے اور جل سنسادنوں کی دیرگا کالی ستھرتا خطرے میں پڑ گئی ہے ایسی پرستھتیوں میں اس سمیلن کا وشیش مہتو ہے کیونکہ اس میں جل سرکشا گلیشیئروں کی رکشا جل سنسادن پر جلوایو پریورتن کے پربھاو تتھا دیشوں کے انکولن کشمتا جیسی مہتوپورن وشائیوں پر اچ استر پر اور ایک سماویشی منچ کے تحت چرچا کی جائے گی ایک اور دوشمبے کا چوتھا جل سمیلن انتراشٹریہ سمودائے کو یہ افسر پردان کرتا ہے کہ وہ تجکستان کے ویشوی پہلوں جیسے گلیشیئر سنرکشان کا انتراشٹریہ ورش 2025 اور وش گلیشیئروں کے دیواس کو تہوس کاریوں میں بدلتے ہوئے سوچھ جل سروتوں کی سرکشا کے لیے نئی پرتیبدھتائیں سویکار کرے دوسری اور یہ سمیلن دیشوں انتراشٹریہ سنگٹھنوں ویگیانک سمودایوں اور نجی کھیتر کے بیچ سہیوگ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سمنوائے کیندر کے روپ میں کاریہ کرتا ہے تتھا جل کوٹنیتی کو جلوایو سنکٹ کے پرتی ساموہک پرتی

आधुनिक ताजिक चित्रकला स्कूल के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा की। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय संग्रहालय के स्वर्ण संग्रह में 16 दुर्लभ और उत्कृष्ट कलाकृतियों दर्शकों के लिए प्रस्तुत की गई है। शोहिदा शराफ ने, जो तजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय के कर्मचारी है, कलाकार अब्दुल्ला अशुरोव की कृतियों के बारे में इस प्रकार कहा है। दर्शकों को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि वे प्रसिद्ध चित्रकार की विभिन्न विधाओं की कृतियों से निकट से परिचित हो सकें, जिनमें शास्त्रीय पोर्ट्रेट, पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य तथा ऐतिहासिक क्षणों के चित्रण शामिल है। अब्दुल्ला अशुरोव ताजिक आधुनिक चित्रकला के संस्थापक, तजिकिस्तान के माननीय कला सेवक और देश के पहले पेशेवर कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने न केवल कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि राष्ट्रीय चित्रकला विद्यालय के निर्माण और अनेक प्रतिभाशाली विषयों के प्रशिक्षण में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने देश में नई पीढ़ी के चित्रकलों के गहत और विकास की मजबूत नींव रखी है। उनकी कृतियां, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, और ओरिएंटल आर्ट्स का राज्य संग्रहालय तथा तजिकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय के राष्ट्रीय संग्रहों में मूल्यवान धरोहर के रूप में संरक्षित है। ऐसी प्रदर्शनियों के आयोजन के साथ साथ राष्ट्रीय संग्रहालय भविष्य में भी कई अन्य प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बना रहा है, जो देशभक्ति की भावना और ऐतिहासिक चेतना को और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब्दुल्ला अशुरोव ताजिक चित्रकला के प्रमुख कलाकारों में से एक है और तजिकिस्तान के राष्ट्रीय ललित कला विद्यालय के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 1924 में तशकेंत स्थित देश अध्ययन कला विद्यालय के संक्षिप्त कोर्स को पूरा किया, जिसने उनकी कलात्मक दृष्टि और सोच के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल्ला अशुरोव सोवियत काल के शुरुआती ताजिक चित्रकारों में से एक माने जाते हैं और उनका रचनात्मक कार्य ताजिकों के सोवियत राज्य व्यवस्था के गठन के दौर में जुड़ा हुआ है। इस समय उन्होंने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रथम डिजाइनर तथा थिएटर मंच सजाकर के रूप में काम किया और समाज की दशा संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी कला में अब्दुल्ला अशुरोव ने मुख्य रूप से पोर्ट्रेट शैली पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक परिदृश्य और विषयगत चित्रकला में भी मूल्यवान कृतियां बनाई है। उनके कार्यों में किसानों का श्रम, तजिकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रकृति और लोगों का दैनिक जीवन विशेष स्थान रखते हैं, जिन्हें यथार्थवाद और उच्च सौंदर्य बोधा के साथ चित्रित किया गया है। वे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी भाग ले चुके हैं और कई पुरस्कारों से सम्मानित हुई है। सन 1945 से वे सोवियत समाजवादी गणराज्य के संघ के कलाकार संघ के सदस्य रहे।

प्यारे श्रोताओ, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक है जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

हाँ जब तक है जा जाने जहां मैं नाचूंगी प्यार कभी भी मरता नहीं मौत से भी ये डरता नहीं लुट जाएंगे मिट जाएंगे मर जाएंगे हम जिंदा रहेगी हमारी दास्तां।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के दो सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते तीसरे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1974 को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता मधाव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येदेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

कोई हसीना जब रुक जाती है महबूबा महबूबा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हां जब तक है जा होली के दिन दिल खेल जाते हैं इस मूवी के गाने हैं शोले का गाना जब तक है जा गाने का गायक लता मंगेशकर संगीतकार राहुल देव बुर्मन गीतकार आनंद बख्शी कलाकार हेमा मालिनी धर्मेंद्र अमजाद खान हैं इस गाने में हेमा मालिनी ने एक अच्छा डांस भी किया है जिसको लोगों ने पसंद की थी नोजिया करमतलो प्रसिद्ध ताजिक गायिका है जिसको न केवल ताजिकिस्तान बल्कि दूसरे देशों में भी सुनकर पसंद करते हैं विशेष रूप से हिंदुस्तान में नोजिया करमतलो ने भारत में संगीत सीखी थी और भारत में रहते समय इस कला को बारीकी से अध्ययन किया था अपने पहले कॉन्सर्ट में उसने कई हिंदी गाने दर्शकों के लिए पेश की थी जिनको लोगों द्वारा पसंद किए गए उनके बाद नोजिया ने दूसरे हिंदी गाने पेश करने लगे जो न केवल हमारे देश में बल्कि हिंदुस्तान और हिंदी गानों के प्रेमियों के बीच मशहूर हो गए हिंदी गानों में से एक हाँ जब तक है जा जाने जहाँ है जिसका एक पार्ट आप पेश करेंगे